0: দিবেহি এফএম, দিবেহীন নায়ক।
1: নদীহে একে মেঘাহাজ দিবেহি এফএম।
2: पतंग संग उड़ गया बचपन, छनक छनक मन, टगर सुहानी रे, लड़कपन आया अब तो कसक मसके क्या मस्तानी रे, अरे क्या हाय जवानी की होती है यही निशानी रे।

0: के पेड़े, रेवड़ी मेरठ वाली चाट तरीबा की लाएगा। अरे मैं हुक्म करूँ तो दूर अरब से पूरा बाग खजूर लाद के आंगन में भरपूर तू मेरे लगवाएगा।
1: अरे लगवा।

0: Liebe HIFM, nur die Ecke Megahertz.
1: ಮೆಹಫ್ತಾಗೆ ವೈರಲ್ ವೈಬ್ ಮಿಶೋ ಮಿ ನಿಮ್ಮಾಲನಿ ವರ ಮದು ಲವೇಕು ನೂನಿ ನುಫೆಣ್ಣ ಫದ ಕುಳದಾನಕಮ ಬಾರಕ ಹುನರ್ವೆರಿಕಮೆ ಎಕುಲವೆ ಲವೇಕುಂ ನವಾರಸತೆಕ ನೋದಿಹ ಅವ್ವನಾಹರುಗೆ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ದಿಲ್ ಸೇಗ ಹಿಮನಾಫವಾ ಛಯ್ಯ ಛಯ್ಯ ಮಿ ಲವೆಂ
2: chal chaiya chaiya chaiya chaiya chal chaiya chaiya chaiya chaiya chaiya
1: sukhwinder singh ki afwa milave finnani malaika arora ge turun shahrukh khan duwamunda reelegge matiga kulefwa milavege music video eki iconic video e sufi lemveri kama tafat folk music ka higgam dance harakata gulwalagen duniyege eki kankolutawge milavani maqbul kan hodafa ಗುಲ್ಜಾರುಗೆ ಫುರಿಹಮ ಳೆಮಕಂ ಎ ಆರ್ ರಹಮಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತಯಾರ್ ಕೊದ್ದೀಫವಾ ಮಿಲವಾಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಹೆದುಮ ಕುರಿ ಮಸೆಕ್ಕೆತ ಕಿಯಾದಮು ಟೀಮು ಬುಣಿ
3: तो रहमान साहब के साथ जब मुलाकात हुई तो वो इतना फनी इंसिडेंट है वो उस दिन गोविंद हैलानी जी की फिल्म तक्षक का जिसके लिए गोविंद हैलानी जी को पंजाबी में पोइट्री चाहिए थी उसके लिए पंजाब से कोई बड़े अच्छे बेहतरीन कोई जिनका मेरे को नाम नहीं पता चला लेकिन उनका इंतज़ार हो रहा था शायद उनकी फ़्लाइट छूट गई तो उस दिन रिकॉर्डिंग थी जिस दिन मैं रहमान से मिला उनका प्रोफाइल आया हुआ था वो जो राइटर थे प्रोफाइल में उनकी फ़ोटोग्राफ भी आई हुई थी उनके मैनेजर ने जाके बोला कि एक लड़का आया है उनके रेफरेंस से भेजा है तो ही इज़ फ्रॉम पंजाब कहते तू लिख लेना गाना मैंने कहा है लिखने की बात कर रही है मैं क्या आई एम रियली वेरी मच पैशनेट अबाउट पोइट्री बट आई एम नॉट द राइटर तो फिर तू क्या करता है मैं क्या जी मैं तो सिंगिंग करता हूँ कुछ लिख सकता है मैं कह जी लिख देंगे उन्होंने सिचुएशन बताई तो तक्षक फिल्म जो तब्बू अजय देवगन उन्होंने अंदर स्टूडियो में जाके ए आर रहमान को बोला कि ही राइट सो वेल तो रहमान ने कहा अच्छा तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इतनी इमोशनल बात इतनी इमोशनल सिचुएशन है उस पर ही इसने बहुत खूबसूरत लिखा है फिर रहमान बाहर आया कहता मेरा एक एल्बम है वंदे मातरम क्या उसके लिए मुझे एक गाना चाहिए तो मैं कि मैं पीर बाबा बुल्ले शाह साहब का कलाम सुनाता हूँ आपको थैया थैया तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया जहां से छैया छैया का जन्म हुआ।